मुस्कान में छुपी है एक कहानी पुरानी, मजनू ने लिखी थी जो कलम से जवानी। फिर भी जो समझे वो मिलेगा नसीब से, फिर भी जो समझे वो मिलेगा नसीब से।